0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, नमस्कार, सत श्री अकाल। गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त ऋषि मिला। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकर हाजिर रहूंगा थोड़ी देर में आपका मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे रेडियो DS 89.6 तड़का पर।

0: हेलो,
1: गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग मैम, नाम क्या है आपका?
1: हमारी मानसी से बोल रहे हैं। हंसना है कभी रोना है।
0: कौन सा मैम?
1: कभी हंसना है कभी रोना है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: हेलो नमस्ते मैम।
1: नमस्ते मैम, नाम क्या है आपका?
0: अंजना शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: मैम गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने की बोले सुनो एक बात, बोले हमें तुमसे मोहब्बत है।
1: ओके
0: ना, फिल्म का गाना मैम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: 6 पे रेडियो DS
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण, डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। बीएस प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरतल, रेडियो डीएस, रेडियो डीएस, रेडियो।
4: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
5: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
6: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
5: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
7: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
8: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं डीएस साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। डीएस में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह डीएस के मटेरियल से बहुत ही कम स्तर के प्रतीत होते हैं। डीएस में हमें राष्ट्रीय साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी ओलंपियाड्स की तैयारी करवाई जाती है, इसलिए डीएस में पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि यदि प्री फाउंडेशन लेना हो तो पूर्वी राजस्थान में डीएस एकमात्र संस्थान है जो इस कसौटी पर खरा उतरा है। आइए आईआईटी और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए डीएस से जुड़कर अपने बेहतर भविष्य को सुरक्षित कीजिए।
3: फोन करो, घंटी जा रही है।
4: हेलो
3: हेलो,
5: हाँ जी, क्या नाम है आपका?
3: साक्षी।
5: साक्षी,
3: हाँ,
5: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
3: गंगापुर सिटी से।
5: बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हो आप रेडियो डीएस पे?
3: चुंदरी चुंदरी।
5: चुंदरी चुंदरी वाला सॉन्ग?
3: हाँ
5: बिल्कुल, सुना रहे हैं गुड़िया आपको, आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में। कुल किया धन्यवाद।
3: हाँ

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे, सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ईशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3: नमस्ते, इसका नाम क्या है आपका?
4: चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गाना है आज पहली बार दिल की बात।
3: कौन सा सर?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: पता सुना रहे आपकी फरमाइश का। कहाँ से बात कर रहे?
1: हिंदी कॉलोनी नागपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मेरा तेरे पास रहने।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: बेटा पलक बेटा कोई और बेटा?
1: हाँ सर।
0: अच्छा बेटा पलक, मैं पिंड मौर खुद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब से दिल्ली तो मट्टू बोल रहा हूँ बेटा।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हाँ जी, DS रेडियो गंगापुर राजस्थान नु सत श्री अकाल बुलाने भाई सारे श्रोते मीरा नु।
1: थैंक यू सर, सत श्री अकाल।
0: बेटा सावन आने वाला है, सावन
1: गाने के बोल सर।
0: गाने के बोल बेटा, आया सावन झूम के गीत आनंद बाकी साहब का लिखा ते संगीत लक्ष्मी का प्यार ज्यादा ओदे विच गुणगुना कर बताऊं बेटा।
1: हाँ जी।
0: आया सावन झूम के ओ झूम के, आया सावन झूम। ये गीत सुना लो बेटा।
1: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना रेडियो में।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:28 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस और हमारे साथ सुन रहे हो आप हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है अक्षरा शर्मा जी की। अक्षरा शर्मा जी ने हमें कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन खुल चुकी है, आप कॉल कर अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं।
1: हो चुप

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं मंजू सिंह।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगा पुटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम कहूँगा मैडम जी।
0: कौन सा?
1: मैडम जी।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपके सामने?

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम दुष्या मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: साँचा तेरा नाम।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लवली।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ओडियो। जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर
2: सुना रहे हैं
0: सिटी का असली फ्लेवर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: 89 सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ईशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
3: हेलो
4: हेलो
3: सर, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
4: नमस्ते, नाम भाव है।
3: कहाँ से बात कर रहे
4: हो?
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: चेहरे पे भूखी जा जाती है,
3: सुना रहे हैं आपकी, ये गाना

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: मनोज।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: अच्छी लगती।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना।

0: हेलो हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम रेखा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं मिर्जापुर से बात कर रही
0: हूँ। कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: कुछ तो बोलूं तो खुद।
0: ओके, सुनना है, सुना रहे हैं आपकी।
2: सुना ओके, तुम्हारी मैं जाऊं। लगता रूम में रहे।

0: मिनट का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरी साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।
1: और क्या कर दे तुझको

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: मैम, मेरा नाम पायल जा रहा है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: गंगापुर सिटी से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: क्रिस्टल गैलो अधिकता की।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी शर्मा, एक पर ये गाना
3: मैम पूरा चल।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो, नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: राम मिजन बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: हाँ, मिजन से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: इतने साल भरी राम।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो।
1: जय भवानी दीदी।
0: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम विमल शर्मा, ओनली विमल, गोकला, गंगापुर सिटी, डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर, राजस्थान।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: आज आप हमारी तरफ से कह दो बरसात कम पूरी है, तो आप कह दो बरसा रानी जरा जम के बरसे।
0: ओके सर, ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हारोल।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? क्या
0: सब कुछ तेरा ही है सावरिया।
1: वो किसे सुना रहे हैं?

0: हेलो हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: नाम राक्षिक।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: पक्का
0: चक्कर सॉन्ग।
1: पक्का
0: ओके सर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:35 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू हो चुकी है, आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराए 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस
4: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक
3: 89.6 पे रेडियो डीएस।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: यहाँ हर बीट में है
4: हेलो।
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: नाम सत्यनारायण मैडम।
5: कहाँ से बात कर रहे
4: हो? गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: तुम्हें ढूंढती है पागल निगाहें।
5: ओम के साथ नारे आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: हरिशीन मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गलती सूरज से ही तेज हवा है ये जमाने से।
1: कौन सी?
0: गलती सूरज से ही तेज हवा है ये जमाने से, तेरे लिए आएंगे बचाएंगे तुझे डूब जाने से।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: ऋषिम मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगा।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
2: शहजाद खान, पुराने मीणा।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: भला किसी का करना सका, बुरा किसी का ना करना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिगा एवरीवन कारवा।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कृष्णा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जब नजर से मिलाई मजा आ गई।
0: कौन सा?
1: जब नजर से मिलाई मजा आ गई।

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: अर्पित मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: करण।
0: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: पिंकी।
1: कौन से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन से गाना सुनना चाहोगी?
0: मेरे वाला सरदार।
1: ओके।
2: 89.6 पे रेडियो डीएस
3: सुनते रहिए, दिल से दिल तक। 89.6 डीएस एफएम पे हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सिद्धार्थ।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? मिर्जापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: लंबी लंबी चोरी।
1: वो कैसा सुना रहे आपकी फरमाइश?
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे, शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों, हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: जय इस छोरे गल्ला सेटिंग हो जा
1: जी साजा छोरा तो घना एंडी है
2: न्यू बता सेटिंग कितनी क्लियर है
3: सेटिंग का तो बेराना पर यार इतने हैं तेरा काका तावालिया ने भी ब्याले जाएंगे।

0: जय हिंद सर।
1: जय हिंद।
0: मिशन क्लीन सिटी कंप्लीट सर।
1: कांग्रेचुलेशंस मिस्टर शर्मा, आपके पीछे जो सीक्रेट ऑफिसर खड़ी है उन्होंने मुझे सारी डिटेल्स ऑलरेडी बता दी है।
0: सीक्रेट ऑफिसर
2: जय हिंद सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं निशा शर्मा जी एक मेहमान के रूप। निशा शर्मा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
4: नमस्ते सर।
3: निशा जी, सबसे पहले तो हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपका परिचय जरूर बताएं।
4: हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा शर्मा है, मैं गंगापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ।
3: निशा जी, आपने एजुकेशन में क्या कर रखा
4: है? जी सर, मैंने MA PGDCA MCA किया हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में मेरा अनुभव 10 साल का है।
3: क्या बात है। अच्छा, अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं आप?
4: जी, मैं बचपन पब्लिक स्कूल है अपना, उसमें मैनेजमेंट में हूँ।
3: अच्छा, मैनेजमेंट में कौन कौन से कार्य देखने होते हैं आप?
4: जी सर, उसमें बच्चों का पूरा देखरेख की जाती है, काफी सारे वर्क होते हैं।
3: अच्छा, आज हम आपके जो प्यारे प्यारे लिसनर हैं, हमारे जो राजस्थान और राजस्थान के अलावा सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मतलब सारे क्षेत्र में सुने जाएंगे, तो इसके लिए हम बहुत सारे पारिवारिक जो गतिविधियां हैं उनका संचालन और उन चीजों का कार्यक्रम की देखरेख के माध्यम से चलते हैं। तो आज सबसे पहले आप हमारे जो श्रोता है उनको बताएं, गर्मी के मौसम में एक महिला की जो परिवार में देखरेख होती है वो कैसे रखें और परिवार स्वस्थ बना रहे?
4: वैसे तो सर काफी सारी चीजें होती है जो महिलाएं गर्मी में अपने परिवार का किस तरीके से ध्यान रखती है
3: जी,
4: बट मैं कुछ टिप्स आपको या दोस्तों को बताना चाहती हूँ जो मुझे सुन पा रहे हैं
3: जी।
4: फर्स्ट तो हमें घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: क्योंकि गर्मी में धूल, गंदगी और कीटाणु तेजी से फैलते हैं
3: जी,
4: इसलिए घर की नियमित सफाई करें
3: जी।
4: रसोई घर में पानी रखने के बर्तन और शौचालय को विशेष रूप से हमको साफ रखना चाहिए।
3: बिल्कुल, शुद्धता है वहाँ देवता भी वास करते हैं।
4: जी सर, जी सर। घर में पर्याप्त हवा और रोशनी आने की व्यवस्था की जाए।
3: बिल्कुल।
4: दूसरा, हमको स्वस्थ और शुद्ध पानी का उपयोग करना चाहिए, जो स्वच्छ पानी होता है हमारा।
3: बिल्कुल, तभी तन मन स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल
4: जी सर, बिल्कुल। गर्मी में शरीर को अधिक पानी की आवश्यकता होती है गर्मी में।
3: बिल्कुल, सभी सदस्यों को हमारे द्वारा, बड़े बुजुर्ग चाहे बच्चे हो, उनको पानी की भरपूर मात्रा दें।
4: जी सर, परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए महिलाओं को।
3: बिल्कुल।
4: और पानी को हमेशा ढककर रखें, संभव हो तो उबाल कर या उसको फिल्टर करके यूज में लेना।
3: पानी से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, तो अगर पानी जैसा आप बता रहे हैं अगर ऐसा पिया जाए एक बीमारी से भी बचा जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे जैसे पेट की प्रॉब्लम या बड़े बुजुर्ग पानी कम पीते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो पर्याप्त मात्रा में सभी मेरे श्रोताओं को ये अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए।
4: जी सर, पौष्टिक भोजन हमेशा तैयार रखे
3: जी।
4: गर्मी के मौसम में हल्का और हमको पौष्टिक भोजन लेना चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखो, खाना समय समय पर, और एक चीज मैं बताऊंगा निशा जी हमारे सुनने वाले श्रोताओं को, कि जब भी हम धूप में निकले उससे पहले खाना खा के निकले बाहर, यानी 10 या 11 बजे से पहले पहले गर्मियों में तो काम कर लेना चाहिए बाजार का, और 11 बजे बाद तो निकलना नहीं चाहिए, और यदि ज्यादा जरूरी हो तो गमछा, स्कार्फ आदि लगा के निकले।
4: जी सर, गर्मी में सबसे ज्यादा हमको दही या छाछ, सलाद और अंकुरित अनाज को उपयोग में लेना चाहिए।
3: बिल्कुल, बहुत
4: तला और भुना मसालेदार भोजन हमको कम उपयोग में लेना चाहिए।
3: बिल्कुल सही बात है। देखो, मसालेदार अगर ज्यादा मसाले खाएंगे तो गर्मी में हमारी बॉडी को दिक्कत हो सकती है।
4: जी सर,
3: इसलिए जितना हो सके छाछ, दूध और भोजन में हम खरबूजे, तरबूज, नारियल पानी और जो भी फल फ्रूट ले सकते हैं।
4: भोजन को हमेशा सुरक्षित रखें क्योंकि गर्मी में भोजन जल्दी खराब हो जाता है।
3: अच्छा अच्छा।
4: बचा हुआ भोजन को हमेशा ढककर रखें, समय पर उसका उपयोग करें। खराब या बासी भोजन खाने से हमको फूड पॉइजनिंग हो सकती है।
3: बिल्कुल सही बात है। तो भोजन को हम कोशिश यही करें परिवार के सभी सदस्यों को सुबह, शाम या दोपहर का जब भी लेते हैं तो ताजा भोजन बनाते समय ही खा लेना चाहिए।
4: जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मी के मौसम में।
3: बिल्कुल सही बात है। छोटे छोटे बच्चे तो टाइमिंग नहीं जानते कि कब पानी पीना है, कब खाना खाना है, तो उनको तो महिलाएं ही बताएं ही ना कि कौन से समय पर उनको भोजन देना है। और देखो महिला जो एक परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है, महिला चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो चाहे बच्चे हो, उनको महिला ही चलाती है, जब भी तो महिलाओं को गृह मंत्री कहा जाता है।
4: जी सर बिल्कुल।
3: अच्छा और कौन से टिप्स है?
4: जी सर, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, दिन में कम से कम एक बार स्नान करें
3: जी,
4: हमेशा हाथों को साबुन से धोने की आदत डालें,
3: बिल्कुल
4: विशेषकर भोजन बनाने और खाने से पहले, ताकि कोई भी कीटाणु हमारे अंदर न जाए।
3: बिल्कुल सही है, कीटाणु अगर आएंगे तो हमारे जो शरीर की एक्टिविटीज है उनमें जाएंगे और हमें बीमार या रोगाणुग्रस्त कर देंगे।
4: जी बिल्कुल, हीट स्ट्रोक से बचाव, दोपहर के समय तेज धूप से बाहर जब भी हम निकलते हैं, यदि बाहर जाना हो तो उनको छाता या टोपी या गमछे का उपयोग हमेशा करना चाहिए।
3: बिल्कुल निशा जी, बिल्कुल सही बात बताई आपने, जब भी हमको बाहर निकलना होता है तो हम सबसे पहले हमारी जो तेज धूप होती है या लू के जो थपेड़े होते हैं इनसे सुरक्षा करना बहुत ही जरूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। कभी भी हम कूलर की ठंडी हवा में या एसी की हवा में बैठे हैं तो तुरंत धूप में नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो चक्कर आने की प्रबल समस्या रहती है। और कोशिश यही करें कि हम ज्यादा से ज्यादा छाया में चलें, छाया में काम करें।
4: जी सर बिल्कुल, नींबू पानी समय समय पर लेते रहें, नारियल पानी जैसे भी हमारे पेय पदार्थ है उनका उपयोग हमको ज्यादा करना चाहिए,
3: बिल्कुल,
4: ताकि हमारा शरीर हमेशा ठंडक प्रदान करे।
3: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमारे नियमित श्रोताओं को दी निशा जी, आप कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
4: जी सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: सभी डीएस प्रेमियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रूबी सोनी फ्रॉम गंगापुर सिटी आज आपसे तलाक के बाद महिलाओं को मिलने वाले कानूनी अधिकार इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तलाक के बाद महिला की पहली आवश्यकता मेंटेनेंस की होती है, उसकी जरूरतों की होती है कि उसको मेंटेनेंस कैसा मिलेगा, कहां से मिलेगा। तलाक के दौरान और बाद में महिला अपने पति से गुजारा भत्ता दो तरीके से ले सकती है, या तो वो चाहे तो अपनी पूरी राशि एक मुश्त ले सकती है या फिर मंथली ले सकती है। उसको दोनों तरह से हक पाने का अधिकार है। दूसरी बात कि ये राशि कितनी मिलनी चाहिए, तो ये राशि उसको जितनी पति की आय है उसके आधार पर अदालत तय करती है कि उसको मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। तीसरी बात आती है कि महिला अगर वर्किंग वुमेन है तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, उसको पति से मेंटेनेंस पाने का, अगर वो वर्किंग वुमेन है तब भी अधिकार प्राप्त है और नहीं है तब भी अधिकार प्राप्त है। वो अदालत से भरण पोषण की मांग कर सकती है। दूसरी बात आती है हमारी बच्चों की कस्टडी की, कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी। तलाक के बाद जो महिला, अगर महिला का बच्चा 5 साल से छोटा है तो वो ऑब्वियसली अपनी माँ के पास रहेगा, और उससे बड़ा है तो कस्टडी माँ को भी मिल सकती है और पिता को भी मिल सकती है। यदि कस्टडी पिता को मिलती है तो माँ को उसको मिलने का पूरा पूरा अधिकार है। माँ जब चाहे अपने बच्चे से मिल सकती है। तीसरी बात आती है स्त्री धन की, कि शादी में महिला को मिले उपहार जेवर जो कुछ भी मिला है उस पर केवल उसी महिला का अधिकार है, ना उसके ससुराल वाले ना उसके पति उसके धन पर कोई दावा कर सकते हैं। उस पर केवल और केवल उसी का पूर्ण रूप से अधिकार रहता है। अगली बात आती है साझा घर में रहने का अधिकार, मतलब जो महिला है तलाकशुदा महिला है, जब तक उसको तलाक नहीं मिल जाता वो पूरी तरीके से उस घर में ससुराल में रहने की पूरी तरह हकदार है। उसे किसी भी तरह से उसका पति या उसके ससुराल वाले उसको घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगली बात आती है पैतृक संपत्ति की, अगर तलाकशुदा महिला अपने माता पिता के साथ रहती है तो उसको अपने माता पिता की संपत्ति में पूरा पूरा अधिकार रहता है। अगली बात आती है कि अगर किसी महिला के पास वकील करने के लिए या फिर तलाक का फैसला कुछ भी करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उसको सरकार की तरफ से मुफ्त बिल्कुल कानूनी सहायता दी जाएगी और वकील भी उसके लिए मुफ्त प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसा वकील चुने कि जो उसकी पारिवारिक वकील में मदद कर सके, मतलब जो उसका थोड़ा फैमिलियर होना चाहिए, ऐसे वकील का सहारा ले तो बहुत बेटर रहेगा। धन्यवाद।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन।
3: तो वक्त हो चुका है 2 बच्चों के, इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहीं तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे बोली बिसरी यादें 89.6 रेडियो DS पर।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है,

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनीषा आपके साथ। जिंदगी कभी हैरान करती है,

0: कभी परेशान करती है, कभी नाउम्मीदी में भी रखती है, लेकिन जीवन की हर परिस्थिति में जिसने ढलना सीख लिया, खुशियों ने बस उसी का साथ दिया। हमें असल जिंदगी के मायने तब समझ में आते हैं जब हम हर एक अंधेरे में उजाले का पैगाम देखते हैं। 89.6 DSFM लेकर आता है आपके आंगन में खुशियों की दास्तां।
1: 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: 89.6 डीएसएफएम पे मैं तनिषा आपके साथ। हमें ना कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर हम सफल हुए तो अच्छा है, और अगर हम असफल हुए तो अनुभव भी होगा। ना कामयाबी हो तो परेशानियां भी ज्यादा आती है, और जो लोग इन परेशानियों का सामना कर लेते हैं, मुकाबला कर लेते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। जैसे पुराना साल जाता है और नया साल आ जाता है, यह हमें वही सीख देता है कि कभी भी टाइम एक जैसा नहीं रहता है। आज दुख है तो कल सुख आएगा, आज सुख है तो कल दुख भी जरूर आएगा। बाकी आप सुनते रहिए 89.6 DSFM तनिषा के साथ। फिर मिलूंगी आपसे यहीं पे
0: 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीच में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीच में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो।
3: दोस्तों, वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: शेनेक्सस।
1: हाँ जी, किवें लगे मेरा गाना? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो, तो मेरे नवे नवे गाने सुनने के लिए गीत एमपी दा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो।
2: DSFM पे हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नूं जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एमपी थिडिया चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।

पीछे जा रही है। एक खुदा देश की चरंगी रूह है। ये 12 साल दा सी जो दी माँ फौत हो गई सी, पर यूं लगता वो अज भी ये आस पास है, क्योंकि वो आखिरी तमन्ना सी कि वह पुत मजार की सेवा करे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे हर भी
1: तेरे तर लेंगे ही बड़ा सोना पुत्त जमी परी लगी है नहीं
2: चल नहीं कुड़ियों डब्बे आ गए ने परिये जल्दी जल्दी मैं भी हेल्प कर दा
3: तू ना ना रहे मुन्ने ते ना परोसा ना करेगा
2: क्यों
3: ऐवे उन्दे फ्लर्टी जे
4: क्यों चंगा वाला ता है क्या ये ता ऐवे बोल दी रंदी है तू ये दे वाल ते आना दे है ना
2: तू इंच क्यों

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों बात हो चुका है 4 बज चुके इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वेग गाने का, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:18 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: BS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: फेरा रे राम, फेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSI अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
3: तो वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपके रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश लेके आ रही हूँ हम। दोस्तों, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है सवाई माधेपुर से। सवाई माधेपुर से हमें कॉल किया है मोनिका मीणा जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश। परिएगा 99.6 रेडियो डीएस पर।

0: हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, यूं तो हंसते हुए लड़कों को भी गम होता है, कच्ची उम्रों में मगर तजुर्बा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: मैनू तो क्यूटी लगती है।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पिल्लूखेड़ा से।
0: और कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गीत तेरे साज का, तेरी ही आवाज हूँ।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: आरबी गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल तू जान तू दर्द दी दवा तू।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी सरप्राइज करूँगा।

0: कहाँ से बात कर रहे हो सर? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हाँ, गाना सुनना चाहते हैं, बरसो रे मेगा मेगा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: निकिता,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: क्या तुम्हें पता है
2: मुझे मेरा साथी मिल गया है।

0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: मैं ठंडी राम गुजर बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: गाँव बतरिया से बोल रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाने के बोले हैं दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए।
0: ओके सर, सुना है आपकी फरमाइश करिएगा।

कैसे करूं महुआ के रूप का बखान, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, चांद सा चमकता चेहरा, एड़ी तक लंबे रेशमी बाल, जब वो मुस्कुराती तो जैसे बिजली कौन जाती। भगवान जी ही ऐसा रूप भर सकते हैं माटी के पुतले में।

जवान हो गई थी मऊआ, फिर भी कहीं शादी ब्याह की बात नहीं चलाई किसी ने। सुबह शाम वो अपनी मरी माँ को याद करके रोती, रात दिन कलपता था बिचारी का मन। मन समझती है ना आप?

0: हेलो।
1: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: विराट कोमल।
1: कहाँ से बात कर रहे हो विराट जी?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: 47 फैल करे।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है? कोमल। कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बेखुदी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपको, नाइस पड़ेगा।

0: लगा कर रखें और 30 मिनट बाद यानी कि आधे घंटे के बाद अपने बाल धो लें। आपके बालों में से डैंड्रफ काफी हद तक चला जाएगा। इसको आप 2-3 बार महीने में रिपीट करें और फिर आप देखेंगे कि आपका जो डैंड्रफ है वो पूरी तरीके से जा चुका है। और अगर आपके घर में नीम है तो उसको महीन घिस कर भी अपने बालों में लगा सकते हैं, ये भी आपके सर से डैंड्रफ पूरी तरीके से साफ कर देगा। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे खुशी,
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं जैसा हम दुनिया को देखना चाहते हैं ना, दुनिया वैसी ही हमें दिखाई देती है। मैं हूँ आरजे खुशी। नया दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हर दिन मैं अपने आप में छोटे छोटे बदलाव करने की कोशिश करती हूँ, ताकि साल भर में, महीने भर में, हफ्ते भर में कुछ बड़े बदलाव अपने अंदर ला सकूं। और मैं जानती हूँ मेरे साथ साथ आप भी अपने आप में थोड़े थोड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने एक ग्रंथ में पढ़ा था कि अगर हम दूसरों में बुराई देखने के बजाय अच्छाई देखनी शुरू कर देना, और इस आदत को बना लें कि जिनसे भी मिले उन सब में अच्छाई देखने की कोशिश करें, तो हमारे साथ भी जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप गौर करेंगे तो आप भी यही देखेंगे कि लोग दूसरों में बुराई देखते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा जीवन खराब है, हमारे जीवन में तो ये नहीं है, खुशी नहीं है। और जिस दिन से आपने लोगों में अच्छाई देखनी शुरू कर दी ना, उस दिन से वाकई में आपके आसपास की चीजें भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस बदलाव के साथ में आज सुबह की शुरुआत करते हैं। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजे खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुन सुनाकर पढ़ पढ़ाकर ये तो पता चल गया है कि तली हुई चीजें खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। मैं हूँ आरजी खुशी, लेकिन हम ना चाह कर भी ये तली हुई चीजें खाना अवॉइड नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तो खा ही लेते हैं, घर में मेहमान आते हैं तो बना ही लेते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि आपने थोड़ा सा तेल लिया और उसमें आपने कुछ भी तला। मान लीजिए कि आपने आलू तले या आपने पूड़ियां बनाई। अब बहुत सारा तेल बच गया, अब क्या करें? उस तेल में वापस से नया तेल डालेंगे और फिर से काम शुरू कर देंगे, या उस तेल को रख देंगे साइड में और जब जरूरत होगी वापस इस्तेमाल कर लेंगे। तेल को बार बार गर्म करना और उसमें चीजें पकाकर खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसलिए तेल का इस्तेमाल उतना ही करें जितना हमारे लिए जरूरी है। और अगर बाय चांस आपने ज्यादा तेल ले लिया है तो उस तेल को आप साइड में रख लें और एक दो दिन से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, वो भी केवल सब्जी बनाने में। ध्यान रहे, आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए तेल को बार बार गर्म ना करें। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजी खुशी। मिलूंगी आपसे कल इसी पते पर। सुनते रहिए, मैं हूँ आरजी खुशी।
0: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: वाह वाह वाह वाह, बुरे यादाश्त के मामले में आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि कुछ दिन कुछ हफ्तों पुरानी बात है जब आप रो रहे थे कि हम वर्ल्ड कप हार गए और अभी देखो कैसे एंजॉय कर रहे हो। चलो गाने एंजॉय करो। गाना कौन सा एंजॉय किया वैसे आपने? पछताओ के गाना सुना आपने अरिजीत सिंह की आवाज में। गाने को लिखा किसने था? जानी ने, और कंपोजिशन भी प्राक ने किया। पर अब एंजॉय करो चार गाने बैक टू बैक सिर्फ आपके लिए। कहां? 89.6 रेडियो DSP।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है ओ बेदर्दिया. लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन प्रीतम ने और मुझे भी गाना गाने का मन कर रहा है. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे. अगर आज आपका बर्थडे तो बहुत बहुत बर्थडे मुबारक हो, हैप्पी बर्थडे टू यू. लेकिन क्या आपको पता है कि बर्थडे केक का कॉन्सेप्ट कहाँ क्रिएट किया गया था? किसी जर्मनी के बंदे ने पहली बार आज से 200 साल पहले बर्थडे केक काटा था. और दुनिया में हर रोज 15 मिलियन लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, यानी 1.5 करोड़ लोग आज बर्थडे सेलिब्रेट करें. उनमें से अगर आप हो तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे. फिलहाल बैक टू बैक 4 गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP.
0: हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

हर बीट में है शहर का कमाल. DS 89.6 शहर की धुन.

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
1: ऊर्जा काली का गाना सुना आपने उदित नारायण की आवाज में, अलका याग्निक जी की आवाज में, लिरिक्स लिखा आनंद बख्शी ने और कॉम्पोजिशन उत्तम सिंह के द्वारा, लेकिन इस गाने को रिक्रिएट और रीअरेंज किया मिथुन ने। सुबह के 9 बज के ऊपर हो चुके हैं भैया और अभी तक दांत खिटखिटा रहे, ठिठुर रहे हो ठंड में। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी है तो भैया क्या कर रहे हो, ठंड आ चुका है, विंटर्स आ चुके, दौड़ने जाओ, जिम ज्वाइन करो, बैडमिंटन खेलो और फिलहाल गाने सुनो। बैक टू बैक 4 गाने आपके लिए रेडियो DS89.6 पे।
0: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।

दोस्तों 7:22 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे सैटून का 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का पर है। दोस्तों मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुनेंगे छोटी सी एक वार्ता।

0: गंगापुर सिटी के अभिभावक और गंगापुर सिटी के सभी नागरिकों को और उनके विश्वास को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने डीएस पर जो विश्वास दिखाया वो अद्भुत और काबिले तारीफ। विश्वास वैसे ही नहीं होता, विश्वास किसी भी संस्था के किए गए प्रयासों से होता है। आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष सैकड़ों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स डीएस साइंस एकेडमी से सेलेक्ट होकर के जाते हैं। बच्चे घर पर रह करके तैयारी करते हैं और यहीं से निकलते हैं। ये गंगापुर की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। आपको पता है कि वर्तमान में गंगापुर जो शिक्षा का हब बनता जा रहा है, उस हब को मिटाने के लिए कुछ ऐसे कुत्सित प्रयास किए। डीएस साइंस एकेडमी की कुछ फैकल्टी टीम को तोड़ा गया और तोड़ करके इस मानसिकता से कि पूरे बच्चे उनके पीछे आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि डीएस साइंस एकेडमी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है, उनके जाने के बाद उनसे बेस्ट बेहतर टीम डीएस साइंस एकेडमी लेकर आया, जिसके कारण इस वर्ष जो नीट की पहली परीक्षा हुई थी उसमें 715 नंबर बच्चे के आ रहे थे और अब
1: रीनीट में
0: 676 अंक आ रहे हैं। ये हमारे जो नई जो फैकल्टी टीम आई है उसके परिणाम के कारण ही ऐसा हुआ है। और उस बच्चे के टॉप 100 में रैंक आने की संभावना है। जेई मेन और एडवांस में भी अद्भुत परिणाम दिए। जब बच्चे वहां पर नहीं गए तो वो इस तरीके से बौखलाहट मन में आई, तो कई इस तरीके के उन्होंने प्रयत्न किए, प्रयास किए। अभी कुछ समय पहले ही आपको पता है कि हमारा जो बचपन पब्लिक स्कूल चलता है, इस बचपन पब्लिक स्कूल से कुछ फैकल्टी और प्रिंसिपल उनको तोड़ करके इस मानसिकता से ले जाया गया कि यहाँ से पूरे बच्चे चले जाएंगे। लेकिन मैं फिर गंगापुर की जनता और अभिभावकों के विश्वास को सलाम करता हूँ कि एक भी बालक वहां नहीं गया। उनके ग्रुपों पर मैसेज डाले गए, उनको रात को 2-2 बजे तक कॉल किया गया, सब कुछ किया, लेकिन पूरे बच्चे 100% बचपन में उपस्थित थे। और बचपन की कुछ जो मैडमें थी उनको भ्रमित करके और साथ में

फैकल्टी गई थी वो फैकल्टी भी वापस आ गई, और इसी प्रकार से एक ही दिन में जो मैडम है वो भी वापस आई है। तो मैं चाहूंगा कि जो पूना

0: और निशा मैम आइए मैडम, इधर आ जाओ मैडम। खुशी मैम, प्रेरणा मैम, वंदना मैम और राखी मैम, गंगापुर की जनता को ये मैडमों के जो फोटो हैं वो होर्डिंग्स में दूसरी संस्था के साथ में लगे हुए मिल सकते हैं, लेकिन जो कहते हैं ना कि दिल है हिंदुस्तानी, चाहे हम कहीं भी चले जाएं लेकिन हमारे दिल में हिंदुस्तान के प्रति भावना है। उसी तरीके से मैडम गई थी, मैडम ये बताती हैं कि जब हम गई थी घर पर जाकर के हमें अपनी गलती का एहसास हुआ, दुख हुआ, पश्चाताप हुआ और फिर हम यहाँ पर आए क्योंकि हमारे हृदय में बचपन बसता है। तो ये बहुत बहुत आप सभी को शुभकामना बधाई और मैं पेरेंट्स को एक सूचना और देना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी मैडम ऐसी हैं जो पाइपलाइन में हैं और निश्चित रूप से वो जुड़ेंगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि डीएस की जो टीम गई थी उसमें जो बायोलॉजी की टीम है वो बायोलॉजी टीम आई और मैथ की टीम पाइपलाइन में है तो मैथ की टीम भी आई थी। इसी तरीके से बहुत सारी मैडम पाइपलाइन में है, वो निश्चित रूप से कल या परसों में आपके सामने यही बचपन में उपस्थित होंगी। तो मैं इस अवसर पर बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के निदेशक श्री अवधेश जी से मैं आग्रह करूंगा, सर आप इस दो शब्द क्या कहना चाहेंगे?
1: अरविंद सर, मैं केवल इतना सा कहना चाहूंगा, बचपन बचपन में ही था, बचपन में है और बचपन में ही रहेगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: आदरणीय अभिभावक गण एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपको सूचित किया जाता है कि बचपन स्कूल के प्रिंसिपल श्री सुमेश गिरी एवं कुछ अन्य अध्यापिकाओं को प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत विद्यालय से कार्य मुक्त कर दिया गया है। यदि आपको किसी अन्य विद्यालय की ओर से कोई भ्रामक कॉल या संदेश प्राप्त होता है तो कृपया घबराए नहीं, ऐसे सभी कॉल्स एवं संदेशों को नजरअंदाज करें। DS एक विश्वसनीय नाम है, कृपया अपना विश्वास बनाए रखें। आपके नन्हे मुन्नों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। आज्ञा से बचपन पब्लिक से

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त ऋषि मीना एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

दोस्तों अभी आपने सुना भजन संध्या संध्या का ये कार्यक्रम। दोस्तों थोड़ी ही देर में आरंभ होगा आपका मन पसंद कार्यक्रम फिल्मी संगीत। दोस्तों रात्रि के 8 बज चुके हैं और फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत।

0: गीत का
1: ढांपा है
2: सच का मुखड़ा ढांपा
3: 89.6 पे रेडियो डीएस
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: बस मजा चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।